0: क्या बात है, प्रोग्राम है पंजाबी रहा 905-673-3573-9057 अपना फोन नंबर है ते रौनक लग चुकी है ने ते तुसी भी जुड़ चुके हो ते थोड़ी कॉल भी आ रही ने 5095 हेलो
1: ट्रक
0: दी पार्किंग बोल्टन च बोल्टन दे विच यार लब लेने आ कोई ना कोई सज्जन मित्र होगा जिन्ना कोल हैगी है ट्रक पार्किंग बोल्टन ठीक है कोई ना तो लाभ के देने ठीक है चलो जी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच तो ट्रक पार्किंग किसी को भी है बोल्टन दस्यो जरा बाई जी उन्होंने हेल्प करिए स्टूडियो नंबर है 905-67

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जिया कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उहां गे इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जिहड़ा सारे फोक डांसिंग कोला जिहड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी होर जिहड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने गे कन्ने जागरण। ते इह है कुछ जिहड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तुस सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नहीं हाँ शर्मा ते अस गल करा दे डुगर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे चा मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वह है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वह स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदरनी जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल च कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुड़ दे नैट पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे च जिन्हें भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते ने ये ते स्टैप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा वो कन्ने कन्ने इनकी जिहड़ी लय है वह बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुनादे हे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्सिया नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एको ड्रेस सैमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: हो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
1: 647 706 6840

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो पंजाबी लहरा के नाल। उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला के खूबसूरत सवेर का आनंद माण रहे होंगे। पंजाबी लहर नाल जुड़े हुए सारे परिवारों को एक बार फिर प्यार सत्कार आदाब ते प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: ट्रांस खूबसूरत में था, खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रिक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। जिला नाल बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज सारनिया टू लंडन किचर वाटर कैम्ब्रिज वुडस्टॉक तो लैके पैरिस ब्रेंटफर्ड हैमिल्टन तक, हैमिल्टन तो लैके नैगर फॉल के बॉर्डर तक और ईस्ट के जी टी एंटायर कवर करते हुए असी ईस्ट के असी कर्टिस बोवनविल हैम्पटन ओशवा क्रॉस करते कोबर्ग तक, नॉर्थ ईस्ट के असी सू ऑटवा के रस्ते लिंडसी पीटरबरो तक अपने रेडियो सेट से सुन रहे हो। तो मस्कोका काउंटी के सी लेक एरियाज़ जिते सारे वेकेशन पर जा रहे समय मैनिटोलन आइलैंड तो लैके ओवन साउंड तो लैके ग्रैवनहस तक 11 और 400 हाईवेज तक दूर दुराडे के एरियाज़ के रेडियो सेट से सुन रहे हो। इंटरनेट की मदद नाल दुनिया के किसी भी कोने सू www.am530.ca radiowazTorontoCom radiowazTorontoCom के उ जाके या पंजाबी लाइन के पेज पर जाके लिसन लाइव पर क्लिक कर ले एम 530 के सारे शोज़ को सुन सकते हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं सोमवार की सवेर के उम्मीद दिन खुशकवार चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर डर नहीं है किसी का तो विरोध भी नहीं है किसी का, विरोध है जुल्म के खिलाफ, विरोध है कोई ऐसी चीज़ जो किसी लिए ठीक नहीं, पर डर किसी का नहीं है, निरपो निरवैर तो दुश्मनी तो डर जड़े ने यह दो चीज़ा कमज़ोर लोग रखते हैं। फिलहाल आप नहीं है तो आप चलेंगे अगे हूँ। नैक्सट है कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे, यानी कि नवी चीज़ा रोज़ जिंदगी चाहगियाँ तुसी उन्होंने लैके अगे चलते रहोगे। तो फिक्र फाकियां जरूर रेडियो आवाज़ के नाल चढ़दी कला वाल एक बार फिर जुड़ गए हो सोमवार की सवेर तो गल्लां बातें चलदियां रहणगियां। संतोष मेरे नाल, संतोष जी की हाल चाल है?
1: काफी कॉल आ रही काफी रेंटल बोल रहे थे और काफी जाने बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं कि हाँ जी असि अपनी प्रॉपर्टीज इदा दे दी, काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कि तुम सोल्यूशन दसोगे टेनेंट खाली नहीं कर रहे घर, सो तुसी सारे साड़ी टीम एक बार कॉल कर सकते हो जो थोड़ा कोई क्वेश्चन है या थोड़े को रेंटल प्रॉपर्टीज है। तो साड़ी टीम का नंबर है 416-473-42-42-4742। जी किसी को भी कोई बिजनेस है साढ़े को काफी कॉल आ रही है बिजनेस वाल लोग जाना चाह रहे हैं, सो तुम बिजनेस सेल ले भी सानू कॉल कर सकते हो जी किसी को कन्वीनियंस स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है या ड्राई क्लीनिंग स्टोर है या होर भी कोई बिजनेस है तो तुम कॉल कर सकते हो सानू 416-473-42-42। अमन जी साढ़े को ब्रैम्पटन के घर भी है, 4 बेडरूम का घर है और बहुत ही वधिया लोकेशन है। जे किसी को डाउन पेमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है तो जेडे सैलर है वो वेंडर टेक बैक दे रहे हैं, सो वो बहुत ही वधिया डील बन जाएगी। सो तुसी कॉल करना है साड़ी टीम नूं 416-473-42-42 416-473-42-42।

कैसे कमाल दे लिरिक्स आ, तेरा मेरा प्यार किते कागजी ते नहीं, साडे नाल सोहणे हो कहिंदे फिर नाराज नहीं है। कमाल दीआं गल्लां ने, देखो कागज जिहड़ा है उसकी एक अपनी कहिंदे हुंदे आ, कागज नूं की कह सकदे आ बई, कागज नूं पानी च पा लो ते खुर जांदा। तेरा मेरा प्यार किते कागजी ते नहीं, इह तां रूहां दे मेल हुंदे आ बई, जिस वेले मिलदियां ना रूहां, बस उस वेले

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ, 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 2898010566। ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
3: एक लाइफ है जिससे लव है,
4: ये कहते मुझसे सब है,
5: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है,

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: प्यार ना दिती हुई निशानी वर्गा माखियों मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लेके रंग तहाड़े रूबरू लेके

0: सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल्स।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
2: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
3: मैं चलिया स्काईडम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
2: भई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
3: कॉल करो 905-874-9878।
4: ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ।
5: ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਏਅਰ ਟਿਕਟਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ, 2883 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਕਾਲ 905-678-1200।
6: सही सुनिया बई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टी है, स्वीट महल दी वेज नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999।

0: टीचर है ही नहीं, सेल्फ स्टडी है, वो तो और भी आसान है, तभी हमारी फीस 499 हो जाती है 199 की जगह, राइट। तो आसान से ही कोर्सेज है, आप स्किल हासिल करें, फंडिंग हासिल करें, अपने अकाउंट में हासिल करें, बहुत लोग कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत टाइम, इसमें कुछ कैच नहीं है, कोई पेपर नहीं बन रहे आपके, तो कोई सेटिंग नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, कोई कमीशन भी नहीं है,
1: हाँ,
0: साफ, साफ तरीके से कर रहे हैं।
1: डायरेक्ट कॉल इन्हें करो, कॉल करके थोड़े जिहड़े सवाल ने वो जरूर एक बार बैठो, सवाल अपने करो, सवालों के जवाब देने लिए ये बैठे हैं। सो थोड़े किस तरह के कोई भी सवाल है तुम जरूर एक बार इन्होंने करके गलबात करो। सो नंबर एक बार फिर साझा कर दो सर,
0: 837-264-3175 437-264-3175
1: बहुत बहुत धन्यवाद। 437-264-3175 437-264-3175 से तुसी हुणे कॉल

0: चक्कर लगाओ।
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-33 416-457-3381।